यत्र मनो नास्ति तत्र तत्र न किञ्चन यत्र यत्र मनस्फूर्ति तत्र तत्र

वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य

तेरे दिशाई सत्य साई के मचाई चाहिए बाबा प्रेम बाबा के लाल नहीं के।

वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य जपिए बोलो नित्य जपिए।